0: Akashvani presents Morning News. Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys' singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
1: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
0: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबुएलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
3: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल।
3: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी।
3: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी

0: पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
0: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वाले सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से,
1: आज का प्रश्न है क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे।

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ
0: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
0: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
3: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
3: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
3: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर

0: अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
1: जी,
0: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
1: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ईयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
0: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
1: जी पिताजी।
0: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
1: ठीक है।
0: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है। कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
1: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
0: अरे प्रवाहन।
2: जी पिताजी।
0: तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
2: वो पिताजी,
0: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
2: जी वो
0: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
2: पिताजी, हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
3: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
1: हाँ हाँ पिताजी।
2: और पिताजी, हम तो अपने साथ हरिराज और शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
3: हाँ।
2: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे। खेत बस तैयारी समझिए।
0: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
2: जी,
0: उन्हें कल हस्तिनापुर जाना है।
3: पर क्यों पिताजी?
0: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी। वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
3: पिताजी, हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
1: जी पिताजी,
3: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार है।
0: बहुत अच्छा।
3: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
2: पिताजी, देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
3: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
0: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो, तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
3: जी पिताजी।
0: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
3: अच्छा पिताजी।
0: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
2: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
4: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
0: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
4: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
2: चल चल, बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
5: और क्या,
2: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
4: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ो को घी भी पिलाया है।
2: अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
0: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ, अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
3: जी पिताजी।
0: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गाँव पहुँच जाना।
2: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे?
3: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है। वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
2: भैया, सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
3: हाँ।
2: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
0: हाँ ये तो है।
5: हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
6: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: हमारी प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
1: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
0: अरे वो देखो वो देखो,
1: क्या
0: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
1: अरे क्या बांके और सजीले सवार है। वाह वाह
0: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
3: लगता है जीतने का।
4: ओ वो पहुंच गया, जीत गया, जीत
0: गया, धन्य हो धन्य हो।
5: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा, धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
3: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
3: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
4: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
5: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
4: चलो चलो।
5: अरे देखो कितना अच्छा घोड़ा।
3: वाह, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
5: इसे पकड़ लेते हैं।
3: चलो चलो।
5: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
6: ये पकड़ा।

0: अरे ये कोलाहल कैसा है?
1: छोड़ दो छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
0: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
2: अरे चलो चलो भाग चलें, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध न कर बैठे।
0: अरे रुको तो सही, अरे देखो देखो
2: क्या
0: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ वो देखो वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
2: हाँ, अच्छा हुआ संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
0: हाँ।
2: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
0: हाँ।
2: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
3: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष

0: देखा आपके शहर में भी ऐसा कुछ हुआ हो तो जरूर बताइएगा। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती हैं और फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए एक रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से भी आती है कि अपील होती है कि भाई जो जहां है वहीं रहें, और फिर ऐसे में बच्चों की जिद जो घर में रहते हैं तो उनकी शुरू हो जाते हैं। आज हम स्कूल नहीं गए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करके दो, हमें वो करके दो, ये सारी तो जो चीज़ें हैं ना, इस तरह के सीन बहुत सारे घरों में हुआ करते होंगे।
1: दिखते हैं ऐसे सीन, और होता यूँ है कि अगर हम काम में लगे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, बच्चे ने ज़िद की कि भाई आज मम्मी हमें पास्ता बना दीजिए, तो हमें जब काम में रहते तो हमने कहा ठीक है भाई पास्ता बोल रहा है तो बना देंगे, पर तब हम ऐसे ही उनसे वादा कर देते कि हाँ बना देंगे, पर पास्ता बनाने के लिए घर में सामग्री भी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: फिर अगर हमने पास्ता नहीं बना दिया तो फिर बच्चे जो है ना सारा घर सर पे ले लेते हैं।
0: हाँ।
1: और उनकी जिद के आगे पेरेंट्स जो होते हैं हतबल हो जाते हैं।
0: हम कई बार उसमें ऐसे उनको एक बात उनकी इधर उधर करने के लिए उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाए तो हम कहते हैं अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास है ना,
1: मेरा गुल्लक
0: उसमें से निकाल लीजिए आप, इस तरह से भी कहते हैं बच्चे।
1: तो यानी गुल्लक हमारे बचपन का मनी बैंक, या यूं कह लीजिए बड़े होने के बाद भी अगर घर में गुल्लक होना तो एक अलग ही प्रसन्नता रहती है कि जो कुछ भी इधर उधर घर में चिल्लर पैसे कुछ रुपए इधर पड़े हुए हैं तो हम झट से उसमें डाल देते हैं, तो हमें भी एक सुकून लगता है कि चलो हमारे पास इसमें तो बचत है। भले ही बड़े बड़े हमारे बचत खाते होंगे, बड़े बड़े हमारे FDs होंगे, पर ये जो छोटा सा गुल्लक होता है ना, ये बड़ा ही मासूमियत भरा होता है।
0: बिल्कुल। और एक सुकून सा देता है कि अगर कभी अचानक से कुछ छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमारे पास गुल्लक है, है ना? और इसी साथ में ये भी है कि हम जब बहुत सारी बातें होती घर में बैठे हैं तो कई सारे बातें निकलती, क्योंकि बरसात के दिन अक्सर बाहर जाना हो नहीं पाता, बातें बहुत सारी निकलती हैं, और कभी हम किसी की जद्दोजहद की बातें करते हैं, किसी की कोई प्रेरणा स्रोत कहानी के बारे में जिक्र निकल जाता है। तो आज के दिन हम कहानी पद्मश्री के खंड में बात करेंगे कुछ इसी तरह मंजमा जोगथी की,
1: जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखे हैं, और हम सारे श्रोताओं को उनके जीवन से जुड़ी कितनी परेशानियां थी और उसके बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। पर अब क्या करना है दीपा?
0: देखो अब मैं क्या कर रही हूँ।

0: सोनाली कहाँ खो गई तुम?
1: मैं खो गई थी हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ने में।
0: देख रही थी मैं कि बहुत सारे संदेश आए हैं और तुम चाट रही हो कि कौन ज्यादा से ज्यादा हम संदेश शामिल कर सके अपने कार्यक्रम में,
1: क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं ना इतनी मेहनत से कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि उनके कमेंट्स शामिल करना बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे श्रोता
0: जी, ये बात तो 16 आने सच है। और अब ये कि कहानी उनकी जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें, परेशानियां, हालात, बहुत दिक्कतों भरे देखे उनके बारे में। ये एक महिला जिन्होंने दर दर भटकने के दिनों को देखने से लेकर राज्य के लोक कलाओं के प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख बनने तक की उनकी ये कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजम्मा जोगथी की, उनके असाधारण जीवन की कहानी जो कि आज स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई है।
1: बेल्लारी के पास कल्लूं कंबा गाँव में मंजूनाथ शेट्टी के रूप में जन्मी मंजम्मा ने अपने जीवन में अकल्पनीय पीड़ा झेली है दीपा। ये तब शुरू हुआ जब किशोरावस्था में ही मंजूनाथ ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना शुरू किया। वे कहती है कि जब मैं 15 साल की हुई तब मैंने एक महिला के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था और परिवार वाले उनके भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वे तृतीय पंथी थी। अकेलापन और भीषण गरीबी के दिन झेलती रही मंजम्मा। इसी दौरान एक दिन उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। दावणगेरे के पास एक बस स्टैंड पर उन्होंने अपने पिता पुत्र की जोड़ी को देखा और जो पिता ने लोकगीत गाए और पुत्र ने अपने सिर पर लोहे का बर्तन रखकर नृत्य किया।
0: उन दोनों को और उस दिन को याद करते हुए मंजम्मा बताती हैं कि यह जोगप्पा समुदाय का एक लोक नृत्य था और मैं हमेशा से ही इस नृत्य से मोहित रहती थी, इसलिए मैं वो पिता जो ये कर रहे थे बस स्टैंड पे ये वाली कला, वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे मुझे ये नाच जो है ये नृत्य है इसे सिखाएंगे। खुशी की बात ये है कि वे मान गए। फिर क्या होने लगा कि मंजम्मा हर दिन उनकी कुटिया में जाती और ये नृत्य सीखती। तो जो घड़ा जो उनके भाषा में उनकी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जिसे चोंबू कहते हैं उसको संतुलन करना, कभी कभी तो किसी देवता की मूर्ति को भी सिर पर रखकर सुंदर नृत्य करना बहुत रोमांचक उन्हें लगता था।
1: और उस समय मंजम्मा को ये नहीं पता था कि ये कला उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव

0: बुलाएगी। एक साथी जोगप्पा ने उन्हें उस समय के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार कालव्वा से मिलवाया। वे याद करते हुए बताती हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कालव्वा ने मुझे अपने सामने नृत्य करने के लिए कहा था, जिसे आप ऑडिशन कह सकते हैं। उन्होंने किसी से मेरे चेहरे पर मेकअप करवाया। मुझे याद है कि मैंने आईने में देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, ये उनका कहना था, और मैं बहुत सांवली थी और इस मेकअप ने मुझे गोरा और सुंदर बना दिया। मैंने कालव्वा के गायन पर नृत्य किया और बस बात खत्म। जल्दी ही वे मुझे नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाने लगे, फिर बड़ी भूमिकाओं के लिए भी उन्हें बुलाने लगे।
1: जी, और इसके बाद रंगमंच और नृत्य ने उनके जीवन को व्यस्त कर दिया। वे आगे बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे असली रूप को खोज निकाला हो और मुझे मंच पर आज़ाद कर दिया हो। मंजम्मा जो कल्लव्वा जोगथी के नृत्य समूह में स्थायी एक नृत्यकी बन गई थी और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने लगी। कल्लव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने मंडली का कार्यभार संभाला और नृत्य को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया।
0: जोगथी नृत्य, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, अपनी पहचान और लोकप्रियता का श्रेय काफ़ी हद तक उन्हें ही देता है। एक विशिष्ट जोगथी नर्तकी लेट कर केवल मुँह से फर्श से सिक्के उठाने और सिर पर घड़ा संतुलित करने जैसे कर्तव्यों में भी माहिर होती है। यानी शरीर इतना फ्लेक्सिबल चाहिए,
1: बिल्कुल, और संतुलन कितना ज्यादा चाहिए,
0: बहुत जरूरी है। और मंजम्मा को 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी जीवन कहानी हावेरी जिले के कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम और कला स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है।
1: वो आगे कहती है इंटरव्यू में कि मेरे लिए कला ही ईश्वर है, इसने मेरे भूखे पेट को भरा, ये हर दिन मेरी आत्मा को तृप्त करती है और जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब इसने मेरा साथ दिया।
0: और वर्ष 2021 में उन्हें भारत गणराज्य के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सरकार द्वारा उसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह वे राज्य में प्रदर्शन कला के शीर्ष स्थान का संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली तृतीय पंथी महिला बनी है। कितनी बड़ी बात है ना दीपा,
1: बहुत बड़ी बात। और ये वे कहती हैं कि उनकी ये चाहत है कि जोगथी नृत्य को एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिले। इसे केवल जोगप्पाओं द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती हैं कि बच्चों को भी अन्य नृत्य शैलियों की तरह ये नृत्य शैली सिखाई जानी चाहिए।
0: और एक इंटरव्यू में अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि जब कर्नाटक जनपद अकादमी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उस दिन उनका फोन लगातार बज रहा था। वो सारा ध्यान, प्यार और सराहना मुझे अभिभूत कर रही थी। मंजम्मा आंसू रोकते हुए कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी स्वीकृति और प्यार के लिए तरसते हुए बिताया। यानी कितना संघर्ष था उनके जीवन में।
1: बिल्कुल, जब परिवार आपको छोड़ देता है, अकेलापन आपका साथी बन जाता है, ऐसे में जब कहीं से भी प्यार दुलार अपनापन मिलता है ना, तो वो इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी ये सोचने, मतलब हमारी सोच से भी बाहर है।
0: और ऐसा होता है ना कि आम इंसान जो होते हैं ना, हर बार हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है। पर देखिए ना, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों के बाद
1: जी
0: एक पद्मश्री तक पहुंच गई। यानी कितनी बड़े, कितना संघर्ष होगा उनके जीवन में।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। बातें बहुत सारी गंभीर हो गई है, क्यों ना कहीं कुछ एक संगीत, सुमधुर गीत
0: सुनते हैं। गीत

0: सोनाली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा?
1: सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहाँ पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना?
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना। तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना चल सकता है ना ऐसा?
1: चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग। वाह क्या बात है, उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पक्के पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने के लिए छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर संतुष्ट रहता था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देखरेख करने के अनदेखी कर रखा हुआ दही बड़े को भरपेट खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी जब वो मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देखरेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था, अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है। बहुत अच्छी यादें आपने साझा की है।
0: तो यादें साझा करें या इसी के बारे में बात करें, एक संदेश और ले लें?
1: हाँ हाँ,
0: ये संदेश कहता है कि बचपन का ही नहीं, मैं तो अभी भी इस मनी बैंक को अपने पास रखती हूँ। गुल्लक में पैसे रखना मेरी बचपन की आदत है, डेली कुछ पैसे उसमें डालती हूँ और साल भर के बाद उसे तोड़ने में मजा आता है। एक उत्सुकता रहती है कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे दो बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हज़ार रुपए थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपए उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ कभी कभी

0: भी ऐसी बात हो जाती है, घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये जान बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हज़ार रुपए इकट्ठे कर लिए
1: तो
0: गुल्लक
1: इसलिए
0: गुल्लक
1: हमें
0: करके।
1: ये संदेश मिलता है इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है,
0: बैंक है, या आप कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मेहनत के जमा किए हुए पैसे कोई यूं ही उठाकर ना ले जाए।
1: गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों के को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। बचपन की यादें और गुल्लक का महत्व, बचपन का खजाना, इसमें जमा किए हुए एक एक सिक्के की खनक में खिलौने, आइसक्रीम और साइकिल जैसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से ही आय और व्यय यानी पैसा बचाने और खर्च करने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है। और तोहफे की परंपरा अक्सर त्योहारों या जन्मदिन पर माता पिता और रिश्तेदारों से गुल्लक तोहफे में मिलता था, जो आज भी यादों में ताज़ा है। आधुनिक रूप में आजकल पारंपरिक मिट्टी के गुल्लक के साथ साथ लकड़ी के नक्काशीदार बॉक्स और पासवर्ड डिजिटल लॉकर वाले प्लास्टिक के स्मार्ट मनी बैंक भी बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है।
0: आजकल तो बहुत अलग अलग डिज़ाइन वाले मिलने लगे हैं गुल्लक। और देखो ना सोनाली, उसमें हर जमा सिक्का केवल धन नहीं होता, वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है। और जब आप उसमें डालते हैं वो, या छोटा बच्चा जब डालता है तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ मुझे अगर 5 रुपए मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 रुपए मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा, आधा खर्च करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो फला खिलौना लाना है, या फला चीज मुझे जो पसंद है या जरूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूँ।
1: और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें कि गुल्लक, अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2 या 5 रुपए 10 रुपए देते थे। उन बच्चों वो बच्चे जो हुआ करते थे पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे, और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी। धीरे धीरे जब सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी दीपा, कि उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी।
0: बिल्कुल। और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में, सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, सही कहा, बचपन की बचत बैंक या मिनी बैंक कहिए, वो गुल्लक ही है जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप्पे टिप्पे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया हाथ में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे, वो दिवाली या जन्माष्टमी त्योहार पर खर्च करने के काम आते थे।
0: बिल्कुल सही कहा, 1-1 रुपए जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने या भविष्य की योजना बनाने या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है।
1: और दीपा ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है कि आज की दुनिया में हर चीज़ तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतज़ार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं। और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है।
0: एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था। हमें घरौंदा में जो भुना अनाज मिठाइयों से भरते थे, वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक में डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी के गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते थे
1: और कभी कभी फोड़ना पड़ता था।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे या

0: पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था। और
1: देखो हाँ, एक और संदेश पढ़ लीजिए।
0: एक एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का एक पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है।
1: और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है। तो एक अंतराल के बाद हम
0: फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए, एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं।
0: बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं, बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना, बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दीवार होती है, दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा,
0: हमें तो एक गीत सुनना है,
1: तो सुनवाते हैं गीत।

0: रहे।
1: भाई हमें तो हमारे श्रोताओं से, श्रोताओं को हमसे प्यार है
2: और हमेशा रहेगा।
1: हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात याद आ गई। 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी, 4 साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे, तो हमने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपये लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें और यह हमारा आशीर्वाद है।
2: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
1: बिल्कुल,
2: सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई। हाँ। इस तरह से भी यानी देखिए यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती। और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
2: किस तरह की परवरिश
1: कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ कि मुझे ये कहना है, बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचाकर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है।
2: और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नज़र सब तरफ रहती है। कभी ऐसा होता है ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है। तो पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज़्यादा ज़िद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे
1: कर रहे हैं।
2: एक साथी ने है दीपा कि बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे तभी से हमारा सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तु

0: ही डिमांड करते हुए आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे हैं।
1: बिल्कुल, देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती हैं कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भर कर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है। इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे वो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पे कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक अलग विषय जो कि विचारणीय है।
0: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने उस जिद के, भाई गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी। यदि जिद की भी जाती तो भली बात ही समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था और केवल भुनी हुई मूँगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था। ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई हर समय बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है, जहां पर तुम्हें योग्य है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करे, सोच समझ के उनसे वादा करना।
1: क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत सतर्क और सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश ये भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं। जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ, बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
0: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है। कि बचपन में माँ ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनने नहीं की ना तो उनसे मांग लेते हैं, और ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है। वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गर्मी में कोट पहना था। एक बार माताजी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया, तब मैं चुप हुआ। बचपन से मुझे कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहना था जब मैं 7 साल का था।
1: यानी सर्दी की जो मोटी कोट होते हैं
0: वो भी गर्मियों में
1: पहनना इस तरह की जिद करने लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर आते हैं,
0: सुनते हैं।

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुँच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुँच गए जहाँ पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है तो हो जाएगी, बस थोड़े ही दिन में इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना तो हम चिमटे से निकाल लेते थे।
0: ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ों की में दिमाग चल जाता है सबका। और देखिए, हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज़ कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया लिया जाए।
1: मेरी हमारे एक पहचान वाले थे तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना जैसे रबड़ी वाला जो जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने कहा था कि त्यौहार के दिन ही खोलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए। ऐसी भी शरारत
0: ऐसे भी शरारत होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं, बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो ये बात सही है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको फ्राई करके दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली, तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज़ बारिश आई और सारा ट्रैफिक जल्दी जल्दी उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे। मुझे भी लौटना था, बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी, तो मैंने ओला की मतलब उन्होंने कैब बुक कर लिया था और जल्दी से बैठकर वापस आई। बार बार ऑटो वाले से धीमे चलने को कह रही थी कि कहीं फिसलने में कहीं गाड़ी स्किड कर जाती तो वो ना हो।
1: तो अपना अपना ध्यान रखना। एक हमारे सखी ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अत्यधिक सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है। हेडलाइट्स चालू रखें, भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें, वाइपर्स की जाँच शुरू करें, यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर्स सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें। और इन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमे भाप को हटाने के लिए भी डीफॉगर ऑन करें। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो बारिश में जो मैनहोल खुले रहते हैं तो संभल के चले। बहुत सारे लोग मोबाइल

0: देखते हुए चलते हैं
1: तो अभी भी ये, जबकि इतनी बातें और इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं, फिर भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं, केयरलेस हो जाते हैं।
0: तो लापरवाही ना बरते, जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है, तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं।
1: बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं?
0: गाना सुनते हैं।

0: बारिश में कहीं कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की ज़रूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना?
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो ज़िंदगी है
0: जी। बिल्कुल, और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या ज़िंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाती है।
0: बात तो बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना
1: जी। बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंबे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहें, और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए। कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टाइल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत जरूरी है।
0: और एक संदेश कहता है कि हम जहाँ पर रहते हैं रोज आना जाना करते हैं तो हमें वहाँ पता होता है कि रास्ते पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ब्रेकर है। तो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहाँ पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहाँ तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं,
0: चलिए

0: सोनाली देखिए, अब वक्त तो वाकई में हो चुका है सयोनारा यानी कि बाय कहने का, विदा लेने का।
1: पहले श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे। इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़े रहिए और सखी सहेली सुनते रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: विराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी
0: जी, भगवान जी बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए?
1: दीदी मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्यों छोड़ दिया?
1: दीदी अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है, तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी हम बहुत सुनते थे, पहले क्या है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का, एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना, वो गजब के दिन थे।
1: जी चार पांच क्या, हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गाँव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गाँव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन के मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुद्दार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, सुनते हैं खुद्दार फिल्म का।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम साहब।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राजस्थान के डीडवन और कुशावन जिले के छोटी बेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताएं सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाघ से बोल रहे हैं क्या किसी?
1: नहीं एक्चुअल में क्या, अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ से कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। बारिश नहीं हो रही है
1: राजस्थान में? अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे दक्षिण राजस्थान में, तो मानसून आ गया अभी।
0: बढ़िया। ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास?
1: खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते हैं, आम वगैरह है।
0: तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी?
1: अभी तो ये मानसून की बारिश में जो ये बाजरा है, गंवार है, ये मोठ वगैरह की बिजाई चल रही है जी।
0: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी, तब
1: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
0: जी जी। खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं आपके यहाँ?
1: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी भी फसल वो अच्छी होती है।
0: बढ़िया। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फकीरा पिक्चर है उनका गाना है, वो के रहूंगी तेरी,
0: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी।
1: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो परमाई शुरू हुआ था कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
1: बहुत काफी चेंजेस हुए साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरी दूसरी बार बात हो रही है विविध भारती में।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्यप्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ। ममता दीदी
0: जी, सत्यप्रकाश जी बताइए, क्या हाल है आपका? इंदौर का क्या हाल है? बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है
0: जी।
1: और ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम के पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला?
1: भी याद आते हैं, पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी, बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है और अक्सर हम जाया भी करते हैं गांव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके, सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
0: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
1: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ 71,
0: अच्छा,
1: तो थोड़ी सी याददाश्त भी अब थोड़ी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
0: आप बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? हाँ, और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
1: मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष।
0: अच्छा।
1: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ। सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो
0: रही है,
1: तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए, तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हों, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पर जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं और
0: बिल्कुल बिल्कुल घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी, तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो?
1: नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खासतौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है, और वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली क्या है, जोधपुर जैसलमेर उससे ज्यादा सूखा होता है।
0: जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है पर्यटन?
1: उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
0: वाह।
1: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे

0: किले फोर्ट वगैरह
1: जी,
0: और
1: जी.
0: राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं.
1: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई.
0: मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा.
1: जी हाँ,
0: गाना आज का मेरा जो पसंद है वो खुदगर फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश. नितिन मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे.
1: और मुकेश के गाने
0: जी, मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता
1: हूँ. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की. तो बस विविध भारती से भी सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे इस बात के साथ बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना.

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा।
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है, क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता है, भगवान हमें खुद देखते हैं। हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें दिखे।
0: जी जी
1: दीदी, मैं
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं

0: तूने किसको याद किया। ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा, थ्योरिकली मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंसी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
1: मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं, कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है। और साथ में हमारे जो किसान भाई है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
0: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी एक अमृत की तरह है, सारा कुछ पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना।
1: जी जी जी।
0: तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
1: मैडम मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह है ये मेरे लिए काफी वरदान साबित है, कहना चाहिए।
0: अच्छा, किस सिलसिले में?
1: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001-07-2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
0: कहाँ काम करते थे?
1: कोल इंडिया में मैडम, तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं, ये एक हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ की कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
1: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
0: जी जी,
1: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हो रही है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस ओर काम करने के लिए।
0: जी,
1: नहीं तो पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे।
0: तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये।
1: धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और प्रकृति के विरुद्ध काम करना कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो, प्रकृति के विरुद्ध करना हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो, चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हों या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे कई जगह पे हो रही, कई जगह पे हो ही नहीं रही।
0: जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन होता है इस सबसे, वो हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एच बिहारी का, और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
0: क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: प्यार भरा नमस्कार
0: नमस्कार
1: वो प्यार भरा सुनने वाले हो हेलो फरमाइश सुनने वाले हो प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। दीदी
0: जी पांडुरंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते हैं।
1: कैसा है बम्बई में मौसम? कैसा है इधर? बारिश नहीं है, उधर बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में।
0: एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से। जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीरो, गाने के बोले तू मेरा हीरो है मैं तेरा, हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश.
1: नमस्कार मैम.
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ.
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पर रुक जाने का मन करता है ना. तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताएं. त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को.
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है. कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग दो महीना.
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है? ठीक है.
1: नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो हो ही जाता है
0: बिल्कुल. और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में बताइए.
1: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है असम, और आता है मेघालय,
0: अरुणाचल प्रदेश,
1: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
0: मतलब खूबसूरती का आलम है. तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए.
1: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ. ये ऊनकोटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए. ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा.
0: जी जी जी.
1: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी.
0: जी बिल्कुल,
1: देखने के लिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: त्रिपुरा का और मशहूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर. देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या.
0: तो ये शक्तिपीठ है.
1: बिल्कुल.
0: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू. वो नाम आपको पता है?
1: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
0: जी.
1: और तो, उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया,
0: राहुल देव बर्मन. तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए. तो
1: जी जी.
0: तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरो का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पेरिस से. और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरूह सुल्तानपुरी
0: जी, गीतकार.
1: संगीत तैयार किया है
0: जी. जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया. अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना.

0: हेलो फरमाइश,
1: आपको प्रणाम है।
0: आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: पहड़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल रमा गुप्ता गोन।
0: वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का?
1: जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ मैं वाराणसी से, वाराणसी का रहने वाला हूँ,
0: तो
1: यही बोलता हूँ श्रोता दंपति अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोन और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोन,
0: तो
1: श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोन।
0: जी बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी के क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है?
1: जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। 2-3 दिन पहले तो बहुत गर्मी थी,
0: तो अब जरा बताइए कि बारिश हो रही है बनारस में, गंगा जी हैं, तो इस समय क्या बाढ़ आई है उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी?
1: नहीं नहीं, अभी उतना नहीं है। जब एक्चुअल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, तो उतनी बरसात इधर उत्तर प्रदेश में कम हुई है बरसात।
0: जी बनारस में जो गंगा आरती होती है शाम को उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें?
1: गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उसमें हवन सामग्री जलाई जाती है।
0: गंगा जी में नौका विहार का भी एक अलग आनंद होता है, तो आपने कभी नौका विहार किया है वहाँ रहते हुए?
1: कई बार किए हैं। चलो मैं तो पहाड़िया क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैं गंगा जी में 78 में बनारस में आया था, मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है, पूजा पाठ और आरती देखी गई है। मैं रहता हूँ वहीं बगल में सारनाथ है।
0: अरे वाह क्या बात।
1: सारनाथ में जैसा आप जान ही रहे हैं कि अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में।
0: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है और

0: बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है, तो इनमें से आपको क्या शौक है? क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: कजरी जो है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
0: अरे वाह क्या बात,
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो।
0: तो गा के सुनाई गनवा।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
0: बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना?
1: देखिए बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर घिरा बदला ए आर रहमान जी, जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल।
0: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: खान फिल्म के नर गनर घी राय बदला ए आर रहमान जी जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल
1: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी।
0: क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोलिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी जी बरेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है, याद है क्या आपको?
1: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका गेरा रे
0: बरेली
1: बरेली
0: के
1: के
0: बाजार
1: बाजार
0: में। और बरेली की और कोई
1: जी।
0: खासियत हो तो बताइए आपके नजर से।
1: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
0: अच्छी बात है। और अपने काम काज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम जी अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
0: जरी का काम
1: हाँ
0: करते
1: जी
0: हैं, मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े, कुर्ते, क्या बनाते हैं
1: मैम जी, हम
0: या?
1: सूट भी बना लेते हैं, साड़ियाँ भी बना लेते हैं, आए पर शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियाँ भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम करदाना मोती ये भी बना लेते हैं।
0: तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है, क्योंकि आजकल लोग सादा पसंद करते हैं ना ज्यादातर?
1: सबसे ज्यादा डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की।

0: शादियों में
1: हाँ बंदी
0: बताएं
1: हाँ
0: कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं।
1: जी, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले। गाने के वो रहेंगे सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को

0: और हजारों विद्यार्थियों की एक रैली को फ्लैग अप कर करके रवाना किया है। मेरा ये थीम होगा कि तेलंगाना को नशा मुक्त करने के लिए हम सबसे पहले अपने घर को नशा मुक्त करेंगे। वारंगल और हनुमकुंडा डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों को जो संदेश गया है, मुझे लगता है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर कोई करेगा तो आप सब लोग। यह अभियान बिना मीडिया के सफल नहीं होगा। मीडिया जब अपने इस अभियान को बार बार लोगों के बीच ले जाएगी तो लोग नशा मुक्त होने का काम निश्चित रूप से करेंगे। इस नाते सबसे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने इस बात को निश्चित रूप से जनता के बीच ले जाए। हमने उसमें टीबी मुक्त भारत का भी चर्चा किया है और आई अपील टू ऑल MLAs, MPs, कलेक्टर्स कि टीबी मुक्त करने के लिए न्यूट्रिशन को वो स्वयं भी आगे बढ़ के प्रोवाइड करें। अनेक ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रिशन के नाते जो टीबी के मरीज बने हैं, उन्हें अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो 6 मंथ कोर्स जो दवाओं का होता है वो तो उनको मिलेगा, गवर्नमेंट फ्री दे रही है। मैं अधिकारियों से भी इस बात की अपील करूंगा कि आवश्यकता पड़ने पर वह भी निक्षय मित्र बने और एक दो जो भी उपयुक्त हो ऐसे टीबी रोगियों को गोद लेकर के उनके न्यूट्रिशन का प्रबंध। मैं जब आया हूं तो SGH का भी देखा हूं, उसमें जरूर उनको मार्केट की उपलब्धता जिला प्रशासन मिलकर के कराने का काम करे, नहीं तो उनका परिश्रम अधिक होगा, लाभ कम होगा। इस नाते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि SSG जो है शुरू तो हो जाता है लेकिन बाद में मार्केट न मिलने के नाते वो बंद हो जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा SSG बनाता है और जो पहला रहता है उसको लाभ की जगह नुकसान होता है। इस तरह इस पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस पर काफी ध्यान दे रही है।
1: గవర్నర్ గారి కార్యక్రమంలో సాంఘిక సంక్షేమ మంత్రివర్యులు శ్రీ అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు, రాష్ట శాసనమండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ శ్రీ బండా ప్రకాష్ గారు, రాష్ట ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ శ్రీ సిరిసిల్ల రాజయ్య గారు, గవర్నర్ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ దానా కిషోర్ గారు, వరంగల్ పశ్చిమ శాసనసభ్యులు శ్రీ నాయన్ రాయందర్ రెడ్డి గారు, వరదలపేట శాసనసభ్యులు శ్రీ KR నాగరాజు గారు, హన్మకొండ జిల్లా కలెక్టర్ గారు శ్రీమతి చాహత్ బాజ్పేయి గారు, వరంగల్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద గారు, వరంగల్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ గారు శ్రీమతి శ్వేత గారు, బల్దియా కమిషనర్ శ్రీ టి వెంకన్న గారు, అదనపు కలెక్టర్ శ్రీ N రవి గారు, హన్మకొండ వరంగల్ జిల్లాల అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.